तुगरा ना ने मेरो इन दौरे न पपो उगे मैं पुएना निकुने याने नी मोमो तो तुकुना ने रंग तातंगे रखी ने नंते तिरी कई कानो एंगा ना ने द सोमरो अंका ये पुएन सोले पे नी तेरा आ वनुआ आ वही और कतनो तंगा ने ये मंगस पा करके आ कतनो तंगा नो कावे